पार्टी जे कर तुझ फायर गल पर सुदा आघल रुकी तू नजाद कदे वार पार्टी जे कर तुझ फायर गल पर सौ आघल रुकी तू नजाद वैसे वार।